0: रंग
1: घरी मिला लीजिए इस वक्त सुबह के 5 बजे
2: की खट्टी थी यादों आपके इसी रेडियो

हर सुबह 5 से 10 बजे तक भक्ति के मधुर में कीजिए ईश्वर की आराधना। रेडियो मॉरिशस

गुड इवनिंग कार और प्यार भरा प्रणाम आदाब स्वीकार जी हाँ दोस्तों लोगों का हम बड़े प्यार से स्वागत करना चाहेंगे सुनहरे ऑन रेडियो रवक की धूल आओ जरा यादों को गाने के वक्त आ गए क्योंकि रेडियो पर सुनहरे पर पुराने नंबर के साथ लेके जाएंगे उन वादियों पर वहाँ पे आपकी खूबसूरत याद आपने सजा रखा है म्यूजिक लवर्स का स्वागत है इस खूबसूरत से

देखा जाए तो इंटरनेट की जरूरत है ना नया का शोर गीतों को पल में हर रोज लेकर आते हैं लोगों के लिए गिने चुने और बस करते हैं कि आप से उन खूबसूरत गानों को बस दिल से एंजॉय कर रहे हैं।

उसमें शामिल तेरा नाम जो लफ्ज में कहता हूँ मुक्त से के तमाम मैं शायद हूँ मेरा वास हसीनों से तेरी फुर्सत में मैं

निशा का साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. देखा जाए तो जब घरों में बसी हो कहानी पुरानी, जब घरों में बसी हो कहानी पुरानी तो लेना शुरू हो सुनहरे रेडियो मॉरिशस सुहाना. बिल्कुल आपके लिए कुछ इन्हें चुने नगर जो बस सीधे जो दिल पर लग जाए, जो आपके दिल की बस बिना बयां कर.

नो सुनहरे पर जहां लेकर आए हैं पुराने गीत का बहार खाकर आप लोगों के और उम्मीद है कि सुनते रहे आपका दिल खुशी से बहक उठी है। तो चलिए जी, ये गाना खासकर आपके नाम।

बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त से और बदबخت होने से तकदीर के बुरे होने से और दुश्मनों के मजाक उड़ाने से इसलिए कि हुजूर सलाम को हमारी इस जहां की भी फिक्र थी इस दुनिया की और आखिरत की भी आप चाहते थे कि लोग यहां भी सुकून से जिए और आखिरत में भी उनके लिए सुकून ही सुकून हो पीस हो सो आपने अपनी उम्मत को ये बहुत प्यारी दुआ सिखाई आप सीखें बच्चों को सिखाएं और ये दुआ पढ़ा करें ये नबवी दुआएं हैं इसकी अपनी बरकात है इसके अपने अनवार हैं जाहिर है कि ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है वही सख्त मेहनत और मशक्क़त से बचाता है वही बदबخت होने से बचाता है वही बुरी तकदीर से बचाता है वही दुश्मनों के मजाक और तमस्खुर से बचाता है उसके सिवा कोई नहीं है जो इन तकालीफ से इंसान को बचाए इस बुरे अंजाम से इंसान को बचाए सो उसकी पनाह में आना चाहिए बड़ी आसान दुआ है जो मुहक्किक अल इतलाक सैयदना शाह अब्दुल हक मौदस देलवी अलैहि रहमतुल कवी को उनके मुर्शिद ने सिखाई जब उन्होंने अर्ज की कि मैं कौन सी दुआ मांगूं तो यही दुआ उनको सिखाई तो जाहिर है कि मुहद्दिसीन उलमा सूफिया अहलुल्लाह उसके असरार को जानते हैं उससे वाकिफ है असरार से वाकिफ है असरार को जानते हैं दुआ ये है اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء کہ اے اللہ میں آپ سے سخت محنت و مشقت سے بدبختی سے بری تقدیر سے دشمنوں کے تمسخر سے ان کے مذاق اڑانے سے پناہ مانگتا ہوں جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ اس حدیث میں آئی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سخت محنت و مشقت سے بدبخت ہونے سے تقدیر کے برے ہونے سے اور دشمنوں کے مذاق اڑانے سے اللہ کی پناہ چاہو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ سو ہم اپنے لیے پوری امہ کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سخت محنت و مشقت سے بچا بدبختی سے بچا بری تقدیر سے بچا اور دشمنوں

अंत में फिर एक बार प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए आज के सत्संग की समाप्ति करें। बड़े प्रेम से सभी मिलकर बोलें,

तीन दिन की ट्रेनिंग आयोजित की गई जो 19 सितंबर 2000 एनसीजी के मुख्यालय में समाप्त हुई। इस ट्रेनिंग में सैद्धांतिक सत्र के साथ साथ 4.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी शामिल थी। अन्य खबरों में यह पुनः उद्घाटन सचिव सागर रामगुलाम की 126वीं जयंती के अगले दिन हो रहा है। कल उनकी जयंती के अवसर पर एक स्मरण समारोह भी आयोजित किया गया था। सेंटर में सचिव सागर रामगुलाम के जीवन और योगदान को

शामिल है। गौरतलब है कि म्यूजियम जनता के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक खुला रहेगा। वर्ल्ड क्लीनअप डे से दो दिन पहले तेज कर दिया गया है।

गई है। राधा प्रेम भक्ति और समर्पण का वह नाम जो श्री कृष्ण के बिना नहीं माने जा

और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पेपर लीक का मामले में प्रश्न पत्रों का स्रोत उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक

की जाएगी इस जगह का हाल ही में तकनीकी आकलन किया गया है और इसे खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष माना गया है हालांकि इस नदी में खारे पानी के मगरमच्छों को देखना आम बात है यहां करीब 500 मगरमच्छ हैं जो 4 मीटर यानी लगभग 13 फीट तक लंबे हो सकती हैं लेकिन ब्रिस्बेन राज्य सरकार की 40 साल से ज्यादा पुरानी फाइलों के मुताबिक इन मगरमच्छों के इंसानों पर हमले का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला साथ रहे पटना शुभ समाचारों की ओर शुभ समाचार सुनिए एवेन्यू ओलिए कैट्रबोन में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रकला रामसरन पैदाशा मुनीराम और जिन्हें लीता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे श्याम रामसरन के घर कैट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधीपाल मां की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 2:30 PM ब्रांच रोड फोंजसाक में 31 साल के 31 ईयर्स ओल्ड की श्री तेजस्वी राज जीतन जिन्हें बेबी के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज 3 बजे उनके पिता श्री सुभाषंद जीतन के घर फोंजसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्थल की शमशान भूमि ले जाएगी कमीशन टुडे 3 PM लकावेयन नंबर दो वाकवा में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड के श्री श्रवण कुमार हजारी सिंह जिन्हें मेघदत्त के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज 1:15 पर उनके घर लकावेयन नंबर दो वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फिगिनों की शमशान भूमि ली जाएगी ये शुक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं श्रवण कुमार हजारी सिंह जिन्हें मेघदत्त के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 1:15 पर उनके घर लकावेयन अंतिम संस्कार के लिए सुल्फिगिनों की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमारो इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है

Baba. और स्वागत भी है. वेल दोस्तों, अभी शुरू हो चुका है आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम सुहाना सफर, जो अभी आप इसका प्रसारण द्वारा. वेल दोस्तों, हमारी को सपनी फिल्म बेमिसाल के बेमिसाल वन